बल दिवाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरकै गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। और जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईया जस डिठे सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जे। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे। पंजा प्यारिया सोहां साहिबजादियां चालियां मुकतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया।

का मूर्ख आखिए पाना लहै सजाए महला दूजा। अंदरों झूठे पैज बार दुनिया अंदर पैल अठ सर तीर जे ना वै उतरे ना ही मैल। किन पट अंदर बाहर गुदड़ते भले संसार

महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आसा दी वार दे भोग जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे।

एक ओंकार सत नाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभउ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज तिर भवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बण त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम बरनत सुमत कान हर बूंद बसोरो माबल कोसम बसंत गुणंत न आवे राव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर की कब जन पल उन्हें जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बण आवे ज्यों जन हो त्यों राख हर प्रभ तेरे केते गनो असंख अवगण मेरे असंख अवगण खते फेरे नित प्रत सद भूलिए मोह मगन बिकराल माया तो प्रसादी भूलिए लोक करत विकार बिखड़ी प्रव नेर हूँ ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फिरिया जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करहो किशम सागर नीर भरिया

चित बहु अनदिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। सुख टल गुर सेविए, एहन सुसहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसमंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठियां सोही है, सब नांदा विसाह। सजन सचा पातशाह, सिर सहांद जिस पास बैठियां सोही है, सब नांदा विसाह। सतनाम

सब कुछ तेरे वास तेरा घर भला तेरे घर आनंद वाधाई तुद कर सब कुछ तेरे वास

गए मसकत का नानक ते मुख उजले किती छुट्टी ला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

दीनानाथ मया करो मया करो, दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ कीण समय, शरीर स्वस्थ

पौड़ी वड्डी होवे डा पार तेरा मर्तबा, रंग परंगा ने एक ना जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब कुछ जानना, सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला, तेरे घर आनंद।

कर हाथ तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सवेले रखो राखन हार दयाला नानक करके गोले दया करण दुख हरण उचरण नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आ

नानक सो प्रभ जावो, नानक सो प्रभ जाओ, नानक सो प्रभ जाओ। तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, महाराज महाराज महाराज महाराज। आना

सर्प कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवत्ता जी तेरा नाम सच है श्री वाहे गुरु। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियां आईया बुरियां आईया वाचे धर्म हदूर करमी आप अपनी के लेड़े।

गयम शकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सजन मिलिया। नानक नाम मिला तां जीवा, तन मन थीवा हरिया। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सजन मिलिया। नानक नाम मिला तां जीवा, तन मन थीवा हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

होइ सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस

जाय, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ,

बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिख

दान विसाह दान प्रसादान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान

अमृत षाढ़ बिखुखाई माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। सो कह टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम नूर अरसों कुरसों। तुद डिठे सचे पात सहामल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठे आ सोहे सब नांद आवे। सजन सचा पात साहो सिर सांद जिस पास बैठे आ सोहे सब नांद आवे सा।

सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंत सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कूड़ कूड़ ऐने हो लगा विसरिया करता किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माखो कूड़ डोबे पूर नानक बखाने बेनती तुलबाज कूड़ कूड़ महला पहला
1: सच का पर जानिया जर दस चा होए कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा तो हे सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार ना सुनम डैसी है ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साधके विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सची ले दया जाने जी की किच पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करें निवास सतगुरु नु पुछ कै बैरे करें निवास सच सबना होए दारू पाप कड्डे धोए नानक बखाने बेनती जिन सच भलै होए पौड़ी दान मेहनत लिखा।

माया मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चोर न चावर, बहती जात हृदय ना बिचारो, रथ न असव न गज सिंघासन, छिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न कौ दिष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दोहु कर चारो, मित्र न पुत्र कृतर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शारो, दीन दयाल पुरख प्रापूरन, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपत नाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत।

ब्रह्मादिक शिव संत मुनीश्वर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोज ते गोर तरन गगन आवत हुन तावत सद्य मनुख्य देवर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत प्रिय प्रप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर।

0: राखो सरनाई
1: सुकौटल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाये दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसमदी नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खा

त्रिग शरीर कुटुंब सहत सियो जित हुण खसम न पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म

पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे, अहला जन्म गवाया, दूजा पाओ ना दे लागण, जिने हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिन के तै दुख निवारे, रहा तू दयाल दया पत दाता, के आए हे जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते होए, ऐसा आख बखाने गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागे, सदा रहे हर नाले, तेन की गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सवारे, परम पुलाने से मन मुख कहिए है, ना और वार ना पारे, जिसनो नदर करे सोई जन पाए, गौर का शब्द संभाले,

0: दुआ प्रतापै का सत अगर थवाहो, कल जुरथ गन का कूड़ अगर थवाहो महला पहला।
1: श्याम कै स्तंभ स्वामी सच में अच्छे सच रहे, सबको सच समावै रिग कह रहा, भरपूर राम नाम देवा में सूर नाय लै प्राचित जाए, नानक तो मुखंतर पाए।